0: खदान 0347-61-064-17 मोहम्मद रियाज 0356-25-017 और पीटी सेल नंबर हम याद साथे 0997-310-490 रियाज करियाना स्टोर द इत्तेमाद और द क्वालिटी
1: क्या आप अपने बच्चे के रोशन महफूज और कामयाब मुस्तकबिल के लिए बटग्राम में किसी मियारी तालीमी इदारे की तलाश में हैं? तो फिर आइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में, जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, एतिमाद और क्यादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के बेहतरीन प्रोग्राम, काबिल और तजरीबाकार असातिज़ा इकराम, जदीद तदरीसी तरीक़ेकार, कंप्यूटर और साइंस की जदीद लेबोरेटरियां, पुरसकून और महफूज तालीमी माहौल, तलबा व तालिबात के लिए मियारी व महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तालिबात के लिए कॉलेज सेक्शन में अलीहदा क्लासेस का इंतजाम, यहाँ निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों, जहनी व जिस्मानी नशोनुमा और अमली तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। अपने बच्चों के बेहतर तालीम तरबियत के लिए कल नहीं आज ही तशरीफ लाइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम, जहां ख्वाबों को मिलती है कामयाबी की परवाज।
2: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बटग्राम
3: अमन दरुह संदरदा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: इट्स टाइम टू प्ले योर म्यूजिक।

0: हाँ जी ग्रांड और मुक्ता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 ग्राम जी ओकाल तरफ से गुरुजी प्लेन से रसुती। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: सलाम दफना।

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

पर भाई ये लोग आपके नाम के साथ क्यों नखरे करते हैं, ये भी नाम है। सुबह भाई ये लोग आपके नाम के साथ क्यों नखरे करते हो, ये भी डेम है। सुबह मैसेज बपू ऐसे में हो बहरहाल प्रोग्राम के मैसेज को लियो जहान मनना। माखाम खूब शहर बदली के शहर पर माखाम की शहर ने भी जन बहुम ग्रानू औ क माखाम नहीं नो व्या बहुम ग्रानू ज माखाम ये मा हसीना बलखा जुदाई खबर ये ठीक द खोले करता हूं बबल नजर की गुरु क्या ना हम उठले द जन पर नजर की गुरु शहर पर जन के खुले औ माखाम बदरंग हर हाल द माखाम खुल पर खुल रंग मजे खख खुल खनी अजी गप लगो।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: मैं और ये दे खबर स्पिना नवा
1: जी ये कबलम द शेमा बुबी ये दे बारा नराली शिबी उसे तो मकब कोरतरा चा कबलम द शेमा बुबी उसे तो मकब कोरतरा चा कबलम द शेमा बुबी
0: देर मनन कुम खुशाल
1: जहान मनन से टोल और विदुन कुता और दाई ताको देवरता पूरे रियाज भाई था
0: बस मोहम्मद लाला
1: जी
0: मैं तो जान सरा सरा लिवानी के और खैर दे गम की दी शेरी क्यों हाँ
1: डेरा मनन अल्लाह दी जत मन का टोल मीना वालो मंग देर शुक्रिया दा कम सर मोहब्बत साथी दा मंगा उ मंगो बस को हो जे दू दगाओ के मंगा दे ता दू जले के पार राज जी ने सब को हां
0: बिल्कुल डेरा मनन को खुशहाल हो से आबाद हो से उसी पाद कॉस्मेटिक वे से मालू हां
1: इंशाल्लाह के खुदा
0: डेरा मनन मनन